तव सुप्रभातम् दैत्यार्दिते पुरगण त्रिदिवं प्रयाते शम्भो तदीय शुभभस्मज पञ्चकृत्ये इच्छाकृतिः त्वमसि कुण्डलिनी च दाना श्रीकृष्णमारिगिरिजे तव सुप्रभातम्